का सूफी सिंध की एक और पहचान GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: जी क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कसीदा जो कि आप एंजॉय कर रहे थे, इसके साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिल्कुल जी, आपकी सिद्धा के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे और आप हमारे साथ मौजूद है इसका मुझे पता होना चाहिए। आज ऐसा नहीं बोलूंगे कि जिंदा है, मुझे पता होना चाहिए क्योंकि फिर आप बड़ा मान जाते हैं, अरे भाईजान कैसी बातें करते हैं। अच्छा, उनके अलावा बिल्कुल जी आज के हम टॉपिक की जानब आ जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले टॉपिक बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम ऐसा करेंगे फिर आपको बता सके कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनने वाले हैं। तो अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सबने मुझे बताना है, यानी कि जितनी भी प्यारी प्यारी समाज हमारे साथ मौजूद है तमाम तो लोगों ने मुझे ये बताना है कि आपके घर में सबसे ज्यादा ड्रामा किस बात पर होता है। हर घर का ना एक रूल होता है, अलग अलग हिसाब होता है, तो मुझे आज आप ये बताएं कि आपके घर में, हाँ जी, सबसे ज्यादा ड्रामा किस बात पर होता है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपना सेलफोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1। और जो इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज के ऊपर आइए, वहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, मैं ना देखती हूँ आप लोग कॉमेंट करते जाते लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो भाई लाइक के कोई पैसे वैसे लगते हैं क्या? भला लाइक नहीं करते हैं आप पोस्ट लाइक भी किया करें, दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो पोस्ट को लाइक किया करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी के साथ साथ बताएं आप कहां कहां से हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये भी बताएं टॉपिक आज के प्रोग्राम का कि घर में सबसे ज्यादा ड्रामा आपका जो है ना वो किस बात पर होता है। और इसी के साथ साथ यहां पर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते जाएंगे। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो खास बातें वो बहुत ज्यादा खास है, इसी के साथ साथ आप लोगों को बताया जाता है ताकि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल रख पाए, और खूबसूरती का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा एक जरूरी सा काम बन जाता है। और इसी के साथ साथ अगर आपको इन तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में पता है तो आप मुझे ये जरूर बताया करें कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाते हैं तो आपके एरिया में मिलते हैं या नहीं मिलते, क्योंकि आप लोगों के एरिया में मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है, क्योंकि आपके लिए भी आसानी होगी, आपके आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए भी आसानी होगी। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाजमी से आप ट्राई करें, आपको बताएंगे बहुत ज्यादा बातें जो बताने वाली हैं। और यहाँ पर हमारे साथ सादिया अली मौजूद है प्रोग्राम में, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून कहते हैं, नाइस डे, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? और चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा से, तो की आए हो, खुश आयो? हाँ जी माँ सफा, खुश दाम बतायो, तो वह गाने जी फरमाइश कही मकानो हलान जी कोशिश करना। और वासा भाई हमारे साथ मौजूद है, वासा भाई वालेकुम अस्सलाम वाले सलाम अदर, वेलकम कहते हैं प्यारे भाई को। मूसा कोरी हमारे साथ मौजूद है, सलाम अदी वालेकुम अस्सलाम अदा चाला खुश आयो। और उन खां अलावा वासु भाई कहते अदी असा तमा खां अग में मौजूद बैठा आयो पोस्ट ते। हां बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद जमान कहते गुड आफ्टरनून माय स्वीट बुआ जी एंड वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है मोहम्मद जमान भाई। और हमारे सारे सादिया कहते आप ये पोइट्री है, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह गए हम, लोग समझते रहे कि हमें कोई गम नहीं, वाह साईं वाह। अच्छा प्यारी मोमना हमारे साथ कहते हेलो स्वीटी, हेलो टू यू प्यारी मोमना। अच्छा उन्होंने कहा अलावा मुलाजिम भाई हमारे साथ मौजूद है, आपको वेलकम कहते हैं। अखलाक भाई हमारे साथ कहते नाइस शो, नाइस व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, ओ ये बाबा मनियो तानी। अच्छा मोहम्मद मीरन जकरानी हमारे साथ हैं, जेका बाबा से आपको भी वेलकम कहा जाता है। उन्होंने कहा अलावा किशोर भाई कहते सलाम अद्दा किया आयो, तबियत केसिया, तबियत मुझी सफा ठीक था, पांचो हाल चाल बुधायो, किया था जी तबियत हाणी। और अब्दुल गफार केसर भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलाम, आपका भी वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। और उसके अलावा किशोर भाई कहते हैं आप हमारी बातें याद रखती हो तभी हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं आपको टाइम दे। चले बहुत अच्छी बात है ये तो, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाली सुल्तान हमारे साथ मौजूद है जी, हेलो वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, कैसी है? ठीक ठाक है। और नखा अलावा कहती हैं वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है हमारी प्यारी हाले सुल्तान। चाचा कहते हैं सच बताऊं आपके टॉपिक का आंसर या झूठ, सच्ची बोले भाई, झूठ क्यों बोलना है आपने? और नखा अलावा गोट मोहम्मद तैयब थेबू का अभी बोला थेबू भाई है, सॉन्ग उदराय जो तेरा मेरा है प्यार अमर हाजिर हाजिर, अच्छा साई बस गाने जी फरमाइश करना, न दुआ न सलाम, आई चौथा अच्छा, बो मैसेज तमाम जो शो वेरी नाइस आए सलाम तमाम की वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच तमाम से गड मौजूद है पोस्ट के वधका वधे तमाम के ना लाइक एंड शेयर करनो हुंदो आए शेयर करने सा फायदो यो मिलंदो आए त बाबा असा खोड़ सारे मानन ताई पांजो आवाज पहुंचाए सगुन था उनन के बुधाए सगुन था त मार्केट में केडा भला भला प्रोडक्ट्स तमाम जे लाए अवेलेबल थी चुका है जी हु बस वने नहीं नालो वठी करे तलब करे सकन सो वाईटीश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आइन आईडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आइन जेके तमाम इस्तेमाल करे पांजी खूबसूरती के सफा वधाए सगो था पानी खूबसूरती जो ख्याल रखी सको था सो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप ट्राई करेंगे क्या क्या खास बातें हैं क्या क्या क्वालिटीज हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी क्योंकि यहाँ पर टाइम आ चुका है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाया जाए उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो आप ही कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहना है सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए मैं
1: It's 1:30 PM.
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खिबसे की बनी है आवाज
2: जीए FM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
4: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
5: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-day ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: तव्हां जो ख्वाब आहे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD, 5 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, ख़ासि सहूलियतूं, स्कॉलरशिप मौजूद। 5 सालनि जे कोर्सेस में एडमिशन बिल्कुल फ्री, जॾहिं त DPD प्रोग्राम में सिर्फ़ 10,000 रुपया दाख़िला फीस ऐं फीस सेमेस्टर सिर्फ़ 60,000 रुपया। हिते तव्हांखे मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप ऐं फिज़ियोथेरेपी OPD जी बहितरीन सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर शुदा ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां तस्लीम शुदा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो, सीट्स महदूद आहिनि, तंहिं करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो। ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 07115635642 ऐं 03108166111। छा तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था, जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी?
3: त पोइ भली कार, हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
2: सखर शिकारपुर रोड ते,
3: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
2: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
3: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो।
2: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
3: रिहाइशी प्लॉट्स 80, 120, 150 ऐं 200 गज़ जा,
2: ऐं कारोबारी मौक़े लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज़ ऐं 600 गज़।
3: हिते तव्हांखे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं,
2: साफ़ मिठो पाणी,
3: बिजली, गैस,
2: 24 कलाक सिक्योरिटी,
3: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे,
2: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौक़ो बणाए थो।
3: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
2: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
3: कॉन्टेक्ट
2: 03009317252
3: and 03132757860. Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar.
2: Tamaje mehfooz mustaqbal aur behtareen investment jo behtareen intekhab.
3: Health is wealth, jahan mahir doctors share karte hain sehat ki asli baat. GFM ka health awareness show, host Aga Jabbar ke saath, jahan mulk ke mayanaz health specialist doctors sehat se mutalliq aham topics par apna experience, professional rai aur mufeed malumat share karte hain. Apni medical expertise aur healthcare brand ko hazaron listeners tak pahunchane ke liye health is wealth ka hissa baniye. Health expert ya program sponsor ke taur par स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राबता करें आगा जब्बार 03009312700।
4: यार मैं छा क्या किथे वन्या, घर में बैठो आया पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई ना ही थई।
5: छो भला छा थियो तोखे, साफ साफ बुधा मसलो छाए।
4: यार एक मसलो हुजे त बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे, न भुख सही लगे थी ऐं जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वञन था ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी, कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां।
5: यार तुंहिंजा घणा न, बस हिकु ई मसलो आहे।
4: हिकु? इहो कीअं?
5: हा, तुंहिंजो मैदो ख़राबु आहे। छा तो न ॿुधो आहे, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी, न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी।
4: त पोइ मां छा कयां?
5: सवलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स। हे कुदरती जुज़नि मां तयार कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुलु ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो। बुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट फूकजणु ख़तमु, सुस्ती ख़तमु, जिस्म में ताक़त ईंदई,
4: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
5: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी आए राबते जे लाए नंबर भी अथई 0305-58-00-616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त
6: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
7: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
6: जीए एफएम 88 नेटवर्क
7: सिंध की आवाज
8: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
9: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते
10: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात
11: तमाम भी पंहिंजो ख्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़ जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी
12: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में
11: सखर शिकारपुर रोड ते
12: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं
11: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
12: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो
11: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर
12: रिहाइशी प्लॉट्स 80, 120, 150 गज़ जा
11: ऐं कारोबारी मौक़नि लाइ कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज ऐं 600 गज
12: हिते तव्हां खे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं
11: साफ़ मिठो पाणी
12: बिजली गैस
11: 24 कलाक सिक्योरिटी
12: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे
11: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो
12: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
11: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री
12: कॉन्टेक्ट
11: 03009317255
12: and 03132757860 Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar
11: Tamache mehfooz mustaqbal aur behtareen investment jo behtareen intekhab
13: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हो किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक बिजनेस के प्रमोशन जॉब वैकेंसीज पब्लिक अनाउंसमेंट्स इवेंट्स सेमिनार्स स्पेशल ऑफर्स स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन जीएफएम है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राबता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03009319667
14: GA FM 88
15: सिंध की आवाज
16: जनाब व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो हाँ जी जनाब स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स 57 से आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे साथ शेयर किया करें क्योंकि कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग होती है इसी के साथ साथ आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है जरा वो भी बता देते हैं तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि आप मुझे बता रहे हैं आपके घर में सबसे ज्यादा ड्रामा जो है वो किस बात पर होता है क्योंकि हमारे घरों में एक ऐसा इंसान जरूर होता है हमारे फैमिली में जो कि बहुत ड्रामेबाज होता है और बात चाहे कोई हो ना हो लेकिन उसका ड्रामा तो भाई हर वक्त चलता ही रहता है तो आप मुझे बताएं आपके घर में जो है वो सबसे ज्यादा ड्रामा किस बात पर होता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं 8881 पर और फेसबुक पर इसी के साथ साथ आप जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास लाते जाइए फेसबुक पर ही या पैनल पर आप हमें ज्वाइन करते जाइए ओके जी मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को यकीनन पसंद आने वाले हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जैसे कि भाई व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम है व्हाइटिश लवली क्रीम है व्हाइटिश फेस वॉश है व्हाइटिश सोप है व्हाइटिश का डॉक्टर पिंपल ट्यूब है व्हाइटिश का लोशन आता है व्हाइटिश के हेयर रिमूवल लोशन आते हैं जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद है ओके जी, तो आपके लिए मतलब कुल मिलाकर सारे ही तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद है। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करने वाले हैं, और जो प्रोडक्ट आप परचेज करने वाले हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आप वो क्यों परचेज करने वाले हैं। क्योंकि अक्सर देखा है मैंने बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, यानी कि ऐसा कह लें कि भाई उनको नॉलेज नहीं होती इस बारे में कि वो अगर मार्केट जाते हैं तो उनको बस दुकानदार कोई भी प्रोडक्ट पकड़ा देता है तो वो आराम से उसे परचेज करके आ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, और ये प्रोडक्ट्स तैयार कैसे किए गए हैं। तो आप लोगों को मैं बिल्कुल इसी तरह से जो है ना अवेयरनेस फैलाने के लिए आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम पेश किया जाता है, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले तो क्या ऐसी खास बातें जो आप लोगों को मिलने वाली हैं जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जिक्र करते हैं जी व्हाइट एज लवली क्रीम का। और व्हाइट एज लवली क्रीम का जिक्र हम इसलिए करेंगे क्योंकि व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ये मुझे लगता है व्हाइट एज वालों ने इतनी जबरदस्त तरीके से इसे तैयार किया गया है, इतनी प्यार से इसे तैयार किया है कि हर इस्तेमाल करने वाला इंसान जो ना वो बिल्कुल यही बोलेगा कि भाई कितनी शिद्दत से आपने जो इस प्रोडक्ट को तैयार किया है, जो हमें इतना खूबसूरत सा निखार मिला है। और ये खूबसूरत सा निखार ऐसा नहीं होगा कि भाई सिर्फ आपके चेहरे पर निखार आएगा जब आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, या चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों ना है, आप घर में रहते हैं या फिर बाहर आकर कोई काम है, तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का यूज लाजमी किया करें। और व्हाइट एज लवली क्रीम का यूज जो है ना ये बहुत ज्यादा आपको फायदा देने वाला है। वो ऐसे क्योंकि व्हाइट एज लवली क्रीम फेयरनेस क्रीम होने के साथ साथ जो है ना ये आप लोगों के लिए इसके अंदर जो है वो 30 विटामिन के कैप्सूल्स भी एड किए गए और उसके अलावा सनस्क्रीन भी एड की गई है। देख रहे हैं, ऐसा कभी भी इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आप लोगों के लिए किसी फेयरनेस क्रीम के अंदर सनस्क्रीन एड की गई हो। लेकिन भाई साहब व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर आपको सनस्क्रीन भी मिल रही है, यानी कि आपको खूबसूरती भी मिलेगी और आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होगी। तो व्हाइट एज लवली क्रीम का आप इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा आपको फायदा देने वाला है। आपके घर में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर कोई व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है। अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक करें और अपनी खूबसूरती में जरा व्हाइट एज लवली क्रीम का टचअप लाइए। और उसी के साथ साथ व्हाइट एज लवली क्रीम को ऐसा नहीं कि आप इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी जरा बता दे चले। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ये फेयरनेस क्रीम है जिसे आप बस ऐसे लगाएंगे। अगर आप कहीं मेकअप करने वाले हैं, आपको नहीं पता कि भाई गर्मियों का सीजन है तो मेकअप कैसे लगाया जाएगा, मेकअप वैसे भी आपकी स्किन के ऊपर टिकता नहीं है गर्मियों के मौसम में, तो आपने अपना फेस वॉश करना है। उसके बाद व्हाइट एज लवली क्रीम का थोड़ा सा मकदार अपनी हथेली पर ले लेना है। उसके बाद आप ऐसे जो है ना मसल कर हथेली को ऐसे ऐसे दोनों हाथों से उसके बाद क्या करेंगे कि अपने चेहरे पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि भाई आपके चेहरे पर जो है ना निखार आ चुका होगा, ग्लो आ चुका होगा और आपके चेहरे पर ऐसा शिमरी इफेक्ट भी आ चुका होगा। तो चाहे आप मेकअप करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप खूबसूरत हो चुके हैं। तो जल्दी से व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और साथ में आप व्हाइट एज ब्यूटी सोप का भी इंतखाब कर सकते हैं एंड व्हाइट एज का फेस वॉश भी आपको मिल रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स हैं, आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के ये प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप व्हाइट एज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसकी बात ही अलग होगी। और इसी के साथ साथ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब भी आपके लिए अवेलेबल है। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब उन लोगों के लिए खास करके जिनके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा आते हैं, तो एक्नी प्रॉब्लम से अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो आप ऐसा किया करें कि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल किया करें। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब भाई पर्सनली ये बहुत एक अच्छा ट्यूब है। मैं तो आपको ऐसा सोचूंगी कि भाई मैं तो चाहूंगी कि आप लाजमी से इस्तेमाल करके देखिएगा, खास करके वो लोग जिनके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा है। एक्नी प्रॉब्लम अगर आपके चेहरे पर आ जाता है ना तो उसे ठीक करना, उसका एक्नी को खत्म करना एक बहुत हमें डिफिकल्ट सा टास्क लगता है, लेकिन ऐसा वाला कोई सी नहीं है। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आपके पास मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने एक्नी से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि आयुर्वेदिक फार्मूला है, मेडिकेटेड फार्मूला है, इसे आप अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मर्द हजरात खवातीन हर कोई लगा सकता है और लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप दो मरतबा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप सुबह को भी लगाइए और रात को भी लगाइए। एक्नी अगर बहुत ज्यादा एक्नी है, यानी कि बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा एक्नी हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्नी होने की वजह से आप ऐसा करेंगे कि आप तीन मरतबा इस्तेमाल करेंगे। और जनाब बात सिर्फ एक्नी तक महदूद नहीं रहती। अगर आपके चेहरे पर एक्नी है, एक्नी के निशानात हैं, कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कोई इस तरह के निशानात भी अगर आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे या फिर दिन के टाइम इस्तेमाल करेंगे तो लगाने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करने के बाद अपना चेहरा अच्छे से सुखा लीजिए, हाथों को भी क्लीन रखें। उसके बाद जहां जहां पर निशान है, कट है, एक्नी है, चोट का निशान है, वहां वहां पर आपने डॉट डॉट की सूरत में लगाना है। आपने पूरे फेस पर नहीं लगाना क्योंकि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ये पूरे फेस पर लगाने के लिए नहीं है। अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को किसी अपनी नाइट क्रीम के अंदर एड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा जो मिकदार है ना, आधा ट्यूब या फिर आधे से थोड़ा कम आप अपनी नाइट क्रीम के अंदर एड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत से लोगों को ये एक आदत होती है कि भाई वो फार्मूले लगाए, फार्मूलों का ये क्रेज उनके ऊपर आ जाता है। तो आप डॉक्टर पिंपल का ये ट्यूब है ना, ये अपनी नाइट क्रीम के अंदर एड कर सकते हैं और व्हाइट एज की लवली क्रीम भी अपनी नाइट क्रीम के अंदर एड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपका जो है ना वो फार्मूला बन के तैयार हो चुका होगा। अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते तब तो ये भाई बहुत ही अच्छी बात बन जाएगी। तो ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से भी अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलने वाले। यकीन नहीं आता तो आप ट्राई करके देखिएगा, फिर आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ जी सिद्रा बाजी बिल्कुल सही कह रही थी। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो नंबर क्या होने वाला है वो भी बता दें। लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए गाना लगाया है, तो हम जरा गाना सुन लेते हैं। और साथ ही साथ आपके मैसेजेस भी मुझे मिलते जा रहे हैं, तो आपके मैसेजेस की जाने भी आएंगे, कौन कौन हमारे साथ हैं देखते हैं। और साथ ही साथ पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें।

बाबा बिल्कुल तव्हांजी दिलड़ी उॾी वेंदी जॾहिं तव्हां वाइटी जा प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा। वाइटी जे प्रोडक्ट इस्तेमालु करण जा सभ खां बहितरीन फ़ाइदा इहे न तव्हांजी ख़ूबसूरती जेका आहे तव्हांखे नेचुरली महसूस थींदी। इहे न त कुझु माण्हू अगरि कोई बि प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा त हुननि खे हथरा दूर लॻंदो आहे न त भाभी हीअ जेके आहिनि मतिलबु क्रीम लॻाए करे गोरा थिया आहिनि या हुननि जे चहिरे ते ख़ासि नज़र ईंदो आहे। पर जॾहिं तव्हां वाइटी सां ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदा त तव्हांजे चहिरे ते नेचुरली जेको आहे न ख़ूबसूरती तव्हांखे नज़र अचणु स्टार्ट थी वेंदी। अगरि तव्हां बि नेचुरली स्टार्ट करणु चाहियो त पंहिंजी ख़ूबसूरती खे त तव्हां वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु लाज़मी करे ॾिसो। हुन खां अलावा चाचा कहते हैं शिमरी इफेक्ट बोले तो आपको मैं बता चुकी हूँ। वैसे आप एक काम कीजिए, गूगल पर आप शिमरी इफेक्ट लिखकर आप इमेजेस की जानिब जाइए तो आपको पता चल जाएगा शिमरी का मतलब क्या होता है। उनके अलावा ये हमारे

बात फुल दादागिरी थी भाई, ये नकरण गुर्जी। और यहाँ पर अखलाक भाई कहते आंसर टीवी रिमोट पर, भाई जान क्या बात है। और साध्या कहती है रिक्वेस्ट है मेरी, बिल्कुल आपका गाना लगाते हैं जी। और किशोर भाई की तबीयत अरे डॉक्टर के दिखारियां तो जिनके डिसी तबीयत सही थी। कितने तमाम डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाली डॉक्टर के तो न था दिखारियो पानी तबीयत। वो क्या है ना कि मुझे शक हो रहा है। नदड़ी आ चुकी हमारे प्रोग्राम में, कहती अस्सलाम वालेकुम इन मौला अली सलाम मदद। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आज लेट हो गई, तबीयत ठीक नहीं इसीलिए मोबाइल रख दिया था, टाइम देखा तो आ गई मैं बस। अरे बाबा वरी अजय तमाम जी तबीयत भी खराब थी वही। वास्तव भाई कहते दी सिडो शाम वाले प्रोग्राम में गडायो मोबाइल जी चार्जिंग खत्म पड़ी थी। चलो जी पानी मोबाइल के चार्ज करी बैठो। और प्यारी मोमना कहती है टॉपिक जब किसकी शादी होती है तो ड्रेस नहीं मिलता तो बस कहते हैं हम शादी ही शादी पर जाएंगे ही नहीं, ड्रामेबाज लोग। ये जो सीन बनता है ना ये बहुत कमाल का सीन बनता है, और इसके ऊपर वाकई घर में एक अजीब सा ड्रामा बन जाता है। या बिल्कुल सही कह रही है निधि, कहती है टॉपिक मेरा ड्रामा ज्यादातर चाय पर होता है, मुझे हर हाल में चाय चाहिए होती है, अगर मेरी चाय खत्म हो जाती है फिर सारा घर सर पे उठा लेती हूँ। भाई आप तो कुछ ज्यादा ही ड्रामेबाज हैं, तो बस अल्लाह बचाए आपसे।

हाँ बाबा लगे ये तो ट्रे में सजाए आई दिलड़ी पो अगले हमरा खड़ी वर्ती दर्द दिल आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम चंदा जाने बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताया कैसी है मेरी प्यारी स्वीटी। अच्छा अली मुर्तजा आ चुके हैं, सलाम गुड आफ्टरनून वालेकुम अस्सलाम। और सादिया कहती है टॉपिक मेरे घर में ये है कि छोटे बच्चे सारा दिन लड़ते रहते हैं, ड्रामे ही ड्रामे, फुल ड्रामे एंजॉय करें। दर्द दिल कहती है हाय सुकून चंदा की आवाज सुनकर अल्लाह मार छुट्टिया। अली मुर्तजा कहते हैं हिरा सनोबर रिमशा उरूसा फरहान बेनजीर आरिफा भी सुन रही है, सबकी तरफ से सलाम वालेकुम अस्सलाम।

किसी पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, ये आप ही लोगों का काम होता है, तो आप ही ने करना होगा ना, कीजिए। और साथ ही साथ मुझे बताइए आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं व्हाइट एज का।

दिलड़ी हुई छावी बादामी अखड़े वारो बणी वियुसि समझो था पर भूरे रंग वारो भी बणी वेंदुसि जॾहिं तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कंदा सो वाइट एज लवली क्रीम त तव्हां बिल्कुलु इस्तेमालु कयो पिया ऐं तव्हां सभु माण्हू ई वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमालु कयो पिया मतिलब घर जो हर हिकु माण्हू लॻाए सघे थो पर जॾहिं वाइट एज ब्यूटी क्रीम जी तरफ़ असां अचूं था त वाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका आहे हीअ बाबा उन्हनि माण्हुनि जे लाइ आहे जेके टीनेजर्स आहिनि जेके नाइट क्रीम लॻाइण पसंदि कंदा आहिनि सो वाइट एज ब्यूटी क्रीम आहे जेका तव्हां इस्तेमालु कंदा बिल्कुलु नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम जे अंदरि एवोकाडो आहे मिल्क आहे एलोवेरा आहे सो ही तमामु प्रोडक्ट्स जेके बि मां तव्हांखे वाइट एज सां ॿुधायां थी ही बाबा कुल नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल आहे ऐं वाइट एज ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां नाइट क्रीम लॻाइण पसंदि कंदा आहियो त तव्हां वाइट एज ब्यूटी क्रीम खे ज़रूर ट्राए करे ॾिसजो ही तमामु ज़बरदस्त क्वालिटी जो प्रोडक्ट अथव ऐं वाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका तव्हां इस्तेमालु करण खां पोइ तव्हां पंहिंजी स्किन खे ॾिसंदा त तव्हांजी स्किन इलाही रिफ्रेश हूंदी तव्हांजी स्किन इलाही ग्लोइंग हूंदी ऐं तव्हांजी स्किन ते तव्हां महसूसु कंदा वाज़े फ़र्क़ु जेको तव्हां पहिरियां कॾहिं बि महसूसु न कयो हूंदो सो वाइट एज ब्यूटी क्रीम हिनखे तव्हां राज टाइम इस्तेमालु करे सघो था इस्तेमालु करण खां पहिरियों तव्हांखे पंहिंजो फेस वॉश करणो आहे या त तव्हां वाइट एज जो फेस वॉश ट्राए करे सघो था या वरी तव्हां वाइट एज जो ब्यूटी सोप लॻाए सघो था अच्छा ॿिन्हिनि में फ़र्क़ु छा आहे अगरि तव्हां साबुण लॻायो या तव्हां फेस वॉश लॻायो त फ़र्क़ जी बि ॻाल्हि अची वेंदी आहे फ़र्क़ु इहो आहे त बाबा वाइट एज जो जेको साबुण आहे न उहो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जी डिटो कॉपी आहे यानी कि हू सेम टू सेम आहिनि ॿई हिकु जहिड़ा आहिनि पर जॾहिं तव्हां वाइट एज जो फेस वॉश लॻाइणु चाहियो था त वाइट एज जो फेस वॉश जेको तयारु कयो वियो आहे त हिनखे वाइटमिन सी सां तयारु कयो वियो आहे वाइट एज जे फेस वॉश में वाइटमिन सी आहे वाइटमिन ई आहे ऐं तव्हांजी स्किन खे ब्राइट कंदो आहे तव्हांजी स्किन जे लाइ ॾाढो बहितरीन आहे ब्राइटनिंग सां गॾोगॾु एंटी एजिंग जे लाइ बि कमु करे थो ऐं इन खां अलावा सफ़ा क्रीमी फेस वॉश आहे सफ़ा क्रीमी समझो था इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे मज़ो अची वेंदो सो वाइट एज ब्यूटी क्रीम ऐं वाइट एज फेस वॉश वाइट एज ब्यूटी सोप तव्हां लॻाए सघो था हर स्किन जे मुताबिक़ आहे सभु माण्हू ट्राए करे ॾिसो

बात तो यही थी, आपने समझने में देरी कर दी। अच्छा मुझो प्यारो अदो चे थो आ हाँ नंढी सिस्टर गड रहन रहा थो उनके अक्सर डॉक्टर वट वठी वेंदो हुअस। कल हुन वट वयस, हुन एड़ा एड़ा सवाल पुछा, आ भुलजी वयस मुखे तकलीफ केड़ी हुई। ये थींदो आयला। मैं डॉक्टर के पास जाने से बहुत घबराती, मां बस दुआ करनी आला सही डॉक्टर जो मुंह न दिखा जा। क्योंकि मुझे डॉक्टर को फेस करना नहीं आता। मैं वैसे तो यहाँ पर तो आप समझ रहे होंगे कि भाई वो शिव मानू आप, पर मैं पर्सनली अगर आप मुझसे मिलेंगे तो मैं बहुत शाय किस्म की इंसान हूँ, मतलब इंट्रोवर्ट। मैं दुनिया वालों को फेस ही नहीं कर सकती। अच्छा उनका अलावा किशोर भाई कहते टॉपिक मेरा भतीजा हितेश कुमार, हितेश मतलब नॉटी आहे। उनका अलावा चौथा मिंट में दिल किया खड़ी वो बाबा, बस थोड़ो यो पर्सनल मैटर हो। इन्हें तो नगा लाइंदा सी वरना दंगे हो जाएंगे। आरिफ अंसारी हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिरा। हिरा कहती हैं तमाम जी कंपेयरिंग बेहतरीन आ, एड्स का अलावा शो ऑसम आहे। अच्छा वैसे यह शे तमाम मुझे प्रोग्राम में नोट कयो ने समझो था सो न जलाए, बस माफ करना कयो मुखे, वो आप ऐसा बोला करें सह लेंगे थोड़ा सा। शेयर कीजिए और बताइए जरा कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ साथ जरा ऐसा कीजिए आप मेरा दिल कर रहा है कि एक एक कमेंट लिखिए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने वाले उसका नाम जरा कमेंट में लिखिए। अच्छा नदड़ी कहती है कि अल्लाह अब नहीं बचा सकता तुम्हें, अल्लाह भी नहीं बचा सकते ना

न्यूज़ ब्रेक हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहे वापसी जल्दी मोड़ी तव्हांजी चवंदा तव्हां करीने वञो हिते वेठा हुजो मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटावां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कयो से सोणा थियो बाबा ॻाल्हि खे समुझंदा कयो

0: FM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News।
2: Brought to you by
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर, बिच्छिए जो मान वधाए।
4: चार्ल्स कार्डाम इंता अबुल निशानी मुहम्मीस
5: सऊदी अरब ऐं तुर्किया जो दिफ़ाई मुआहिदो ईरान जे ख़िलाफ़ नाहे। पाकिस्तान ऐं तुर्किया सां ईरान जा गहरा ऐं तारीख़ी लाॻापा आहिनि। परॾेही

खास नटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो प्रोग्राम है वाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ प्रोग्राम में। और साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज हो चुके हैं, तो आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन को भी दूर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप जान चुके हैं कि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, और इसी के साथ साथ वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप कौन को लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है मार्केट में, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। डी स्किन में ये सिर्फ आप लोगों को दो प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप परचेज करेंगे या फिर डी स्किन का फेस वॉश आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कई मतलब ऐसा वाला सीन बन जाता है कि कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, और सेंसिटिव स्किन होने की वजह से वो ये सोचते हैं कि भाई हम अगर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन मजीद खराब हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस तरह तैयार किया गया है कि इसे आप ऑल स्किन टाइप के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले लोग लाजमी लगाइए, क्योंकि जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और उसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। क्या ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट और क्या ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार किया गया है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा, उसके बाद आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, और इसकी क्या खास बातें हैं वो भी बताएंगे। लेकिन बहुत से लोग बेचारे ये सोचते हैं कि हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर तो मिलते नहीं है, तो हम कहाँ से परचेज करें, या जैसे अभी कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि भाई हम फलां जगह पे रहते हैं, क्या वहां पर अवेलेबल है या नहीं, आप बता दें ताकि हम जाएं तो बस हमें मिल जाए। तो अगर आप जाते ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर वहां पर आपको नहीं मिलते हैं प्रोडक्ट, तो आपने थोड़ी सी जो है ना वो कोशिश करनी होती है, और कोशिश ये करनी है कि आपको नंबर बताती हूँ प्रोग्राम के अंदर, वो नंबर आप डायल किया करें। नंबर के ऊपर आप या एक कॉल किया करें या फिर आप एक मैसेज किया करें। लास्ट टाइम किसी लड़की ने बोला था कि हम नहीं कर सकते कॉल, तो आपके घर में कोई मर्द हजरात हैं तो उनसे कॉल करवाइए, उनसे मैसेज करवाइए, उनको बोलिए भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, ताकि आप बस जाएं और परचेज करके आ जाएं। तो नंबर से ही जरा नोट कीजिएगा। ओके जनाब, नंबर है पहला 03-12-50-25-907, 03-12-50-25-907, और दूसरा नंबर है 03-27-38-43-09, 03-27-38-43-09। ये दोनों नंबर से जो कि आप डायल कर सकते हैं, एक बंद होगा, एक नहीं रिसीव करेगा, तो आप दूसरे नंबर के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। वैसे ऐसा किया करें कि आप उन्हें तंग मत किया करें, आप बस कॉल किया करें। अगर कॉल नहीं करते तो आप छोटा सा मैसेज छोड़ दिया करें कि भाई फला फला जगह पर आपके वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ये अवेलेबल नहीं हुए।

बिल्कुल जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के बारे में भी थोड़ी सी बातें आप लोगों को बताते चले। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, उनको थोड़ा सा बताते हैं। तो जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको तवां जी स्किन जे मुताबिक तैयार थियल आहे। सेंसिटिव स्किन अगर तवां जी आई, यानी कि सेंसिटिव स्किन उहा स्किन हूंदी आहे जेते अगर तव्हां कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदा त तव्हांजी स्किन ख़राब थी वेंदी आहे, तव्हांजे चेहरे ते एक्नी अची वेंदा आहिनि, या फिर तव्हांजी स्किन जेका काफ़ी ज़्यादा रेड थी वेंदी आहे। ऐं हिन सूरत हाल में अगरि तव्हां इहो सोचींदा त बाबा हाणे असां कोई बि प्रोडक्ट इस्तेमाल कंदासीं असांजी स्किन मज़ीद ख़राब थी वेंदी, सो तव्हां इन सूरत हाल में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, हिनखे डॉक्टर्स तयारु कयो आहे, त सफ़ा हीअ परफेक्ट प्रोडक्ट आहे तव्हां सभिनी जे लाइ, ख़ासि करे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके सेंसिटिव स्किन जी वजह सां परेशान आहिनि। ऐं तव्हां इहो सोचींदा न, मां

तव्हां हर कोई इस्तेमालु करे सघो था. तव्हां जी स्किन सेंसिटिव आहे, ऑयली आहे, ड्राई आहे, नॉर्मल आहे, कॉम्बिनेशन टाइप आहे, हर तरह जी स्किन ते तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे इस्तेमालु करे सघो था. और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर बनाने की बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को बनाया इस तरह गया है कि इसके अंदर जो है ना आप लोगों को विटामिन ए बीड्स मिलता है, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है. ये तमाम चीजें जो ना आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी और यकीन जानी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं. यानी कि तव्हांखे फीलिंग ईंदी बाबा त तव्हां कोई अमीरानो प्रोडक्ट लगायो था. सो अगर तव्हां भी मुनासिब क़ीमतुनि में कोई सुठो प्रोडक्ट इस्तेमाल करण चाहियो था त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾाढो बेस्ट ऑप्शन आहे तव्हां वटि. तव्हां बस वञो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर से नालो वठी तलब कयो ऐं परचेज करे अचो. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका तव्हां नाइट क्रीम आहे राति टाइम इस्तेमाल करे सघो था. मर्द मायूं सभी लॻाईंदा बाबा, पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो.

बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरतियां हासिल कीजिए। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं आपके घर में सबसे ज्यादा ड्रामा किस बात पर होता है। उसी के साथ साथ आप अगर हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है तो पोस्ट को काइंडली लाइक और शेयर करती रहिए। अच्छा तवा पाण त ऑलरेडी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा फैन आयो चाचा, ओ डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाईंदा त तवा के आडो भलो रिजल्ट मिलंदो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तवा के डी स्किन जो फेस वॉश भी मिली रहयो आ, जको बुधाय थी त केड़ा फायदा था, पर तवा जो कुछ मैसेजेस आन उही पढ़ी बैठूं था।

क्या बात है, यहाँ पर हमारे साथ ही मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, वाइटेज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं, क्या बात है अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया। अब्बास महर हमारे साथ हैं, अब्बास महर भाई आपको भी वेलकम कहा जाता है। और ये हमारे साथ ही अस्सलाम वालेकुम अदी, छा हाल आहिन, अली साहब की गोठ, गुलाम अहमद साहब की खां, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, असां के कलाम मुद्रायो मुमताज मोलाई जो, बिल्कुल भा तमाम जिला मुमताज मोलाई हलायूं था। मकसूद मना हमारे साथ है, हेलो जी, हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, गाना सुनाते हैं आपको। लगे तो तखनाई देसी तो इश्क में ओ दिल बे, लगे तो तखनाई देसी तो इश्क में ओ दिल। अच्छा ही वारो जे को सॉन्ग है ना, मतलब मां रस्ते खाइंदा वेदायो त चिंग चिन में होटलन ते हर जगह ते डाडू हलंदो आए कसम सा। सॉन्ग जी वाई भी ॾाढी सुठी आहे, ॿुधी कसम सां मज़ो अची वेंदो आहे। फजीला सिंधी में सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा जी, कैसी हैं आप, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं। सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। टॉपिक क्या है, टॉपिक आपने अभी सुन लिया होगा, जवाब बताएं अभी।

ओके ते मकसूद भला कहते हैं कि हाणी बस मां शरबत तो खपाया तमा शरबत खपाए था छो भला खैर ताई चलो भले शरबत खपाया बाबा रोजी कयो था सुठी गाल है पर तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कर जो आमिर खान महेश्वर हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शो वीआईपी आहे तमा जो शमन जो गानो बुधरा जो डीके अली अकबर महेश सर अब्दुल्ला महेश सर आसिफ अली महेश सर और समीउल्लाह हसीब के नाम ओके तो ये मैंने शमन का गाना लगाया है तो आइए एंजॉय करते हैं और शाहनो बलोच भाई मेरा तो देरों

हाँ भाई ॾाढो भलो गानो ॿुधो पिया. हुन खां अलावा यहाँ पर निदड़ी कहती है कि इसीलिए मेरी अम्मी मेरी चाय जो है पहले से निकाल कर रख देती है, नींद से उठ के पहले मुझे ही देती है. वाह साई वाह, ले आ बाबा निदड़ी अजीद. हुन खां अलावा दर्दी दिल कहती है टॉपिक चंदा, जब अपनी पसंद की ड्रेस ना मिले तब घर में ड्रामा होता है. लड़कियों की जिंदगी में सिर्फ कपड़े होते हैं, मुझे ये लगता है कपड़े और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बस. और भाई चाहते क्या है हम लड़कियां, कुछ भी तो नहीं बस बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे जूते और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स.

जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच सादिया। और हैप्पी आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम माय स्वीट, आज क्या हाल है और तबीयत कैसी है, सॉरी फॉर लेट, आज मुझे आने में लेट हो गई, वो इसलिए क्योंकि स्कूल से लेट छुट्टी मिली थी, अभी आई हूँ घर, आते ही आपका शो सुन रही हूँ, वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहते हैं हमारी प्यारी हैप्पी, थैंक यू सो मच।

0: 3 साल के कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जरे तो डीपीडी प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस, फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया। इतने तो मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकम्मल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, फिजियोथेरेपी, ओपीडी जी बेहतरीन सहूलत। ये इधारो सिंध हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा है। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता है। याद रखो, सीट्स महदूद हैं, तह करे पेंजे रोशन मुस्तकबिल लाए अजु ही दाखिला वो। एक खास गाल, इतने मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेस, ओटी, हेल्थ टेक्नीशियन, बिया सब कोर्सेस पिण थींदा आहिन। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबतो 07115635642 03108166111।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंदी हन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
0: तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अड़ी जाए थे ठहन चाहो था जिते हो जे तहफुस जदीद सहूलतों मंजूर थियल सिक्योरिटी
3: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
0: सखर शिकारपुर रोड ते
3: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू
0: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
3: एक शानदार काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो।
0: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
3: रिहायशी प्लॉट 80, 120, 150 गज जा
0: कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज 600 गज।
3: इतने तमाम के मिलन थी जदीद सहूलतों
0: साफ मिठो पानी
3: बिजली गैस
0: 24 कलाक सिक्योरिटी
3: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल सबका वही गाल ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे
0: जेको रिहायश सीड़पकारी बिन्हीं लाइ बेहतरीन मौको बनाए थो।
3: अजी पेंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
0: फौरी कब्जो फौरी रजिस्ट्री
3: कॉन्टेक्ट
0: 03009317252
3: and 03132757860 Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar
0: Tamaje Mehfooz Mustaqbil and Behtareen Investment Jo Behtareen Intikhab
3: Health is Wealth जहां माहिर डॉक्टर्स शेयर करते हैं सेहत की असली बात। GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो होस्ट आगा जब्बार के साथ जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स

0: अवा थो त हज़म ई नथो थिए, पेट फूकजी वञे थो, हथ पेर सुन थी वञनि था, ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी। कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां।
1: यार तुंहिंजा घणा न, बस हिकु ई मसलो आहे।
0: हिकु? इहो कीअं?
1: हा, तुंहिंजो मैदो ख़राब आहे। छा तो न ॿुधो आहे, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त। जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी, न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी।
0: त पोइ मां छा कयां?
1: सवलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स। कुदरती जुज़न मां तयारु कयल कोर्स तुंहिंजे जिस्म जो हिसो बणिजी तुंहिंजे मैदे खे बिल्कुलु ताज़ो ऐं मज़बूत करे छॾींदो। बुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हज़म थींदई, पेट फूकजण ख़तम, सुस्ती ख़तम, जिस्म में ताक़त ईंदई।
0: वाह यार, वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
1: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं, अल नूर दवाखाना रोड़ी। ऐं राब्ते जे लाइ नंबर बि अथई 0305-58-00-600। शिफ़ाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: छा तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी?
5: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
4: सखर शिकारपुर रोड ते,
5: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
4: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
5: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो।
4: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
5: रिहाइशी प्लॉट्स 80, 120, 150 ऐं 200 गज़ जा,
4: ऐं कारोबारी मौक़नि लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज़ ऐं 600 गज़।
5: हिते तव्हां खे मिलनि थी लतूं
4: साफ़ मिठो पाणी,
5: बिजली, गैस,
4: 24 कलाक
5: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेझो आहे,
4: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौक़ो बणाए थो।
5: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
4: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
5: कॉन्टेक्ट
4: 03-00-93-17-252
5: एंड 03-13-27-57-860। हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
4: तव्हां जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ऐं बहितरीन इन्वेस्टमेंट जो बहितरीन इंतिखाब।
5: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हो, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक, बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन, GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच, बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे। एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 03-00-93-19-667।
6: 44 साल जो तजुर्बो, हजारे मरीजन जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 साल जे वसी तजुर्बे सां हर किस्म जा आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारन जो किरण, गंजपण, फॉलेज, खारिश ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसर इलाज फराम करे रहिया आहिनि। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर, नए पिंडवारी पुल जे साम्हूं, PSO ऐं शेल पेट्रोल पंप जे विच में। टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं। अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 03-26-22-00-440।
7: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
8: डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

जनाब क्या बात है, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स है तावन से। आपकी सिद्धर आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं। और हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, तो जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद। आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, सो ब्यूटीफुल सा गाना सुन रहे हो और साथ ही साथ ब्यूटीफुल बनना भी चाहते हैं, तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इनका इस्तेमाल आपने करना होगा। हाँ जी, कहते ना खूबसूरती हासिल करना ऐसे तो नहीं बस चुटकी बजाएंगे खूबसूरती हासिल हो जाएगी। अगर आप खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं तो कुछ करना तो पड़ेगा ना। उसके लिए आपके पास व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जो भी आपको लगे कि ये प्रोडक्ट्स जो है ना, ये मतलब कोई फेयरनेस क्रीम लगाता है, कोई नाइट क्रीम लगाता है, कोई साबुन लगाता है, कोई फेस वॉश लगाता है, कोई ट्यूब लगाता है एकनी वाला, तो हर तरह के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। तो बस आप अपने हिस्सा वाला प्रोडक्ट परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और आपको मिल जाएगी खूबसूरती।

बिल्कुल जनाब, ये दिल आपका हुआ, लेकिन जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहेंगे तो उसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा 0332734 09 0332734 09। और ये नंबर अगर मसरूफ हो, बंद हो, अटेंड ना किया जाए तो आप दूसरे नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं जो है 03125025907 03125025907।

0: जब से महसूस हुआ तब से
1: तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से
0: सोचा था
2: क्या बात है, तुम मिले जब से तो महसूस तब से होना स्टार्ट हो गया है कि आपको खूबसूरती का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो बताया, लेकिन डी स्किन फेस वॉश के बारे में अभी रहता है तो आप लोगों को डी स्किन फेस वॉश के बारे में भी बताते हैं। तो बिल्कुल, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं हम क्रीमें नहीं लगाते हैं, तो भाई आपके लिए डी स्किन का फेस वॉश मार्केट में अवेलेबल है। और डी स्किन का फेस वॉश जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी का सोप है और कितनी अच्छी क्वालिटी से इसे तैयार किया गया। जनाब, डी स्किन का जो फेस वॉश है ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है और आपकी स्किन को जो है ना वो मॉइस्चराइज भी रखता है। तो डी स्किन फेस वॉश जो कि आपकी ऑल स्किन टाइप के लिए, सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप वाले लोग लगाएंगे। और डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल कीजिए जनाब, सुबह को लगाएं, दोपहर रात जब आपका दिल करे तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे के साथ साथ बस अपना फेस वॉश करना हो तो डी स्किन फेस वॉश का यूज कीजिए, और उसके अलावा आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो रात के टाइम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और डी स्किन फेस वॉश जब आपका दिल करे बस तब लगाइए। क्योंकि अगर आप ऐसा देखें ना कि कुछ क्रीमें होती हैं जो कि भाई नाइट क्रीमें होती हैं तो उन्हें आप रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी फेस वॉश ते तहानी का पाबंदी कोने ना, जेमल तवाजी दिल चवे तेमल तवाहानी सगो था।

अच्छा दर्द दिल कहती कि चंदा मेरे घर में ड्रामेबाज है सबसे बड़ी अलीजा, फिर भाई मैं ड्रामे नहीं करती, आप वैसे मासूम लगते हैं। उनका अलावा अख्तियार अली सिंधी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कैसी आप, मैं ठीक हूँ, आपको वेलकम कहा जाता है और आप सर रिजवान साहब को सलाम दे रहे हैं। उनका अलावा रशीद खोसो हमारे साथ, कहते हैं मैं हैदराबाद से आपका शो सुन रहा हूँ और आप हमारे साथ हैं जी। रशीद खोसो कहते हैं आपका शो बहुत आला है, थैंक यू सो मच, इसको समझने के लिए जमाने लगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और रशीद भाई आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, अगर आप क्रीम नहीं लगाते तो डी स्किन का फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किशोर भाई कहते था ड्रामा बारन ते सुठा लगन था, अगर केर वडो करे त समझो हो झगड़ालू आ, हां यो गाल दे तो वाला। अरे चाचा कहते हैं कि बा हां गानो बलो होयो कटे सटे। सादिया थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। और निदली कहती हैं कि नहीं तो मैं इस सबसे दूर हूँ, मुझसे ज्यादा मुझे ज्यादा शौक नहीं ड्रेसिंग या मेकअप, इन सबसे बनती नहीं मेरी, मैं सीधी सी लड़की हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम मानते हैं, हम एग्री कर चुके हैं। लेकिन आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। और रशीद भाई कहते हैं हमें तो इंतजार करवाती है, हमारा मैसेज नहीं शामिल करती हैं। भाई टाइम से सबके मैसेजेस शामिल होते हैं, सब्र रखा करें। बक्तली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं और बक्तली भाई को वेलकम कहा।

क्रेजी मुक गया गाना है। एक और गाना हमारी लिस्ट में है जो कि हदीका जी की आवाज में होने वाला है। चाचे ने फरमाइश कर दी इस गाने की, तो हम एंजॉय करेंगे। और हैप्पी कहती है आज जब घर वाले मेरी कोई बात नहीं मानते ना तो फिर ड्रामे करती हूँ घर में। अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। और नखा अलावा ज्यादा कहते हैं कि लड़कियों से अगर कुछ पूछ लो तो मर जाएंगी, बताएंगी नहीं, अगर नहीं पूछो तो हमें मार देगी। सफा सही ताचो अल्लाह, सफा सही ताचो। अगर कुछ पूछा जाए तो हम कहते हैं भाई बताते नहीं, आराम से नहीं बताते इजीली, मतलब कुछ टाइम लेकर फिर बताते हैं। लेकिन अगर नहीं पूछा जाए तो फिर हम अगले इंसान को मार देते हैं, पूछा क्यों नहीं।

सकलेन अली अबरो हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो जी, हेलो हेलो। रमजान अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहा जाता है। और आप सारे लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा। रमजान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी सारी दुआएं दे रहे हैं। अब्दुल गफार भाई हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहें आप भी।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं
2: GFM 88
1: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: बाह एक वफाकी वजीर जे बयान ते लगी शर्मिला फारूकी जो चवण हो त पंजाब जे वजीरन जो कम रुगो पीपल्स पार्टी ते तनकीद करणी आहे लाहौर

अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ ग्लो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत। सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियो चायो कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं
3: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: रंग रौनकू ज़रख़ेज़ी असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर। जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो

0: कीटाणु छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। Hiring?

0: हेलो
1: हे नायल, आर यू फ्री? कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना?
0: नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बोलो।
1: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं। कैन यू प्लीज टेक मी देयर?
0: हाँ, तुम बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ।
1: यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो।
0: सी यू।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनकूं ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद। हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर। जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॿिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
0: पहचो शहर पहचो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
1: GFM 90.8।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 8:15 PM.
3: This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
0: सुनते रहो GFM 90.8।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
6: सिंध के दिल से निकली आवाज।
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: GFM 88
1: नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।